सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तिथि 5, तदनुसार 27 अगस्त वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।

नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजना को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आज भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बारे में और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं। समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदन वार का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।

जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 11। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। गीत इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभाग आप सुनेंगे सुबह 8:00 और त्रिवेणी इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा नए गीतों का सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक मुकेश पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30। इसी कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंगदान कार्यक्रम होगा दिन में 11:00 और 12:00। सुनिए हिंदी में समाचार 12:05 पर। यादों की महफिल कार्यक्रम, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दिन में 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दोपहर 3:00 होगा सखी सहेली कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 4:00। संवादक ममता सिंह और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00, 5:30 पर से लेकर शाम 6:30 तक। सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम और इस बीच शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार।

शाम 6:30 पर सुनिए आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और संध्या रंजन। इस कार्यक्रम का समय होगा 6:35। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00 और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए, गजल गायिका ऋतु जोहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2 आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। हवा महल कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:00। इसमें आज आप सुनेंगे नाटिका झूठी शान, लेखन सलीमा खुर्शीद, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 और 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जैसा कि आपको पहले बताया। 10:00 सुनिए छाया गीत कार्यक्रम आलेख और स्वर, संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 293।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास इस कड़ी में स्वागत करता हूं। इस ताल प्रवाह में बहुत सारे तालों के साथ साक्षात्कार हमारा हुआ है। मिश्रा जी, आपके गुरुजी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का एक बहुत प्रिय ताल रहा है, ताल धमार
2: धमार धमार। वो बहुत बढ़िया उनका ताल के पति धमार रहा, और सितारा देवी के जो भाई चौबे महाराज जी थे
1: जी,
2: वो धमार में छूट नाचते थे। छूट नाच
1: वो क्या चीज है?
2: कोई बंदिश नहीं।
1: अच्छा,
2: एक होता है बंदिश, एक होता है छूट की, कहीं से उठेंगे और सम पे आएंगे। ये घंटों की बात है। तो आपने बड़ा सही सवाल किया मेरे गुरु जी का, किशन महाराज जी का।
1: तो क्या हमारे श्रोताओं को आप ताल धमार सुनाएंगे?
2: जरूर जरूर। मैं ताल धमार 14 मात्रे का ताल है ये। ताल प्रवाह में ये खास बात हमने रखा कि ताल हो गया तबले का, प्रवाह एक संगीत की जर्नी है हमारी। इसमें धमार ताल का क्या अंदाज है? पहले तो गुरु
1: बात, हाँ जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा था, चूंकि अधिकतर तालों का शुरुआत या तो धा या धिन से होता
2: जी
1: है
2: जी।
1: इस ताल का शुरुआत कत से है,
2: हाँ,
1: या क से है। कहीं मैंने पढ़ा था कि धा को मार दिया, इसलिए इसका नाम बंगाली लोग धमार कहते हैं। ऐसी भी कुछ बात
2: है? धमार का मतलब ये एक अलग है कि वो बड़ा तेज से तरीके से वो मारता है। वो क धी च धी च धा द दीन दीन ता क धी, वो जो आता है संपर्ण, इसीलिए उसका नाम है कि दे मार दे मार दे मार, करते करते धमार हो गया।
1: क्या कहने,
2: तो इसका जो चरण है सम पर आता है, क पे आता है। और इसी ताल का एक और अंदाज है आड़ा चौतार।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, वो भी 14 मात्रे का है। उसका ठेका इस प्रकार है, धिन तिरिकट धीना तूना कत्ता तिरिकट धीना धी धीना धी धीना धिन तिरिकट धीना, ये आड़ा चौतार है।
1: आपने 14 का जिक्र किया, ताल झुमरा भी तो 14 पर है।
2: वो भी झुमरा है, लेकिन उसमें कभी सोलो नहीं बजा सकते हम, क्योंकि वो गायकी अंग का है ताल है वो, है ना फारूक भाई? वो गायकी का अंदाज है।

0: लेकिन ये जो है धम्मार, तो मैं प्रस्तुत करता हूं धम्मार, लेकिन मुझे कुछ एक अचानक कुछ दिमाग में आया कि एक आप बहुत सारी पिक्चर ऐसे हुआ करते थे दास बाबू की, जिसमें बहुत से हीरो
1: जी
0: खुद बोल को बोले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो प्रस्तुत है पहले श्रोताओं धम्मार ताल, उसकी चरण है क धी ट धी ट धा द दीन दीन तक तक तक दगिन क धी ट।
1: और एक बात, धमार तो अधिकतर पखावज में ही बजाया जाता है,
0: है ना मेरे पास,
1: तो यानी आप बड़ा मुख के तबले पे पखावज बजा रहे हैं।
0: हाँ जी, क्या बड़ा मुख तबला और एक अंदाज उसका खुला बाज,
1: जी हाँ,
0: उसको बंद नहीं कर सकते, फिर नारी और पुरुष में अंतर क्या रह जाएगा?
1: जी हाँ,
0: नारी भी नारी की तरह चल रही, पुरुष भी पुरुष की, उसका नाम ही है कि पुरुष का अंग है वो धम्मार। हाँ जी भैया,

क्षमा चाहता हूँ। खास मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ताल को बजाने के लिए कम से कम एक डेढ़ दो घंटा मिले तो मजा आए, क्योंकि बादल का अंग है ये और इस समय बरसात का मौसम आने वाला है, तो देखिए कैसे उसका उमंग कैसे होता है।

0: और ये कोई बंदिश नहीं है, इसको कहते हैं छूट।
1: अच्छा
0: हाँ जी, ये कोई बंदिश नहीं है। धा, ये बंदिश हो गया। ये छूट हो गया। ये छूट।

0: तो ये एक धम्मार का अंदाज है। अब ये कम से कम अगर मुझे ताल प्रवाह में फिर से बुलाएं तो इसका एक और अंदाज बताएं कि कितना ये धम्मार ऐसा ताल है कि खास पुरुष अंग हाथी कैसे चलती है, एक हाथी और एक उसी का अंदाज।
1: मिश्रा जी, हमने ये सुना है कि ब्रज में जब होली खेला जाता है तो उस समय भी लोग धमार गाते हैं।
0: वो अलग हो गया चीज,
1: पक्की होली।
0: हाँ, वो धमार तो गाते हैं लेकिन धमार बजाते नहीं है।
1: जी जी,
0: वो इसी के अभी मैंने पिछले एपिसोड में दिखा कि चाचे या दीपचंदी या रूपक,
1: जी जी,
0: कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका अंदाज वो अलग है। लेकिन धमार जो अगर

0: सोलो बजाते हैं या नाचते हैं तो वो इसी अंग से होगा।
1: क्या बात।
0: लेकिन उसके लिए आपको अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, माता पिता और गुरु अच्छा सिखाते हैं, लेकिन उस पर आपका भाग्य और आपका रियाज, आपका साधक, आपका साधना, ये सारा मिल के तब कहीं पंचतत्व में मिलता है। वो जैसे बोलते हैं कि अगर इसको खोली तो पंजा होता है, बंद करी तो मुट्ठी हो जाता है। तो इसमें ताकत होना चाहिए, इसकी एक अलग खुशबू है। तो मुझे धमार करते करते, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि एक बड़ा खूबसूरत
1: गीत की
0: गीत उसमें अशोक कुमार जी ने पठन किया है
1: जी,
0: वो बड़ा सुंदर, मुझे अचानक पता नहीं क्यों याद आया। उस फिल्म का नाम है खूबसूरत।
1: क्या कहने।
0: तो अशोक कुमार जी ने एक बड़ा खूबसूरत पठन किया है, उसे कहते हैं कवित्व पठन।
1: और खूबसूरत फिल्म है,
0: खूबसूरत फिल्म है, क्योंकि पुराने जमाने के जितने हीरो हीरोइन थे ना, उनको क्लासिकल सीखना पड़ता था। तो एक खूबसूरत पिक्चर में अशोक कुमार जी का पठन था, नहीं रहता था नंदा नंदा छोम छा ना ना धा

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धन राशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गीत से।

0: अभी आपने सुना आग फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, रचना थी बहजाद लखनवी की, धुन बनाई राम गंगुली ने।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने

0: घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: बगल में चांद हो आई, बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

अभी आपने सुना पगड़ी फिल्म का गीत, मुकेश और सितारा की आवाजों में गीत के बोल शकील बदायूनी के और संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब समय हो चला है अंतराल का।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है फूले बिसरे गीत।

0: मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना मेला फिल्म का गीत, रचना शकील बदायूनी की, धुन नौशाद अली की।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।
2: हम

अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में, रचना मजरूह सुल्तानपुर की और धुन नौशाद अली की।

बावरी नैन फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में केदार शर्मा के बोल धुन रोशन की। इसके पहले जो गीत आपने सुना उसके गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

0: अभी आपने सुना राजहट फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अभी आप सुनेंगे रानी रूपमती फिल्म का गीत, आवाज मुकेश की, भरत व्यास की रचना, संगीत एसएन त्रिपाठी का।

मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने, शैलेंद्र के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

पर कैद इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा ने इसे लिखा है और धुन बनाई है सोनिक ओमी ने।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत

0: गीता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गीत, आवाजें मुकेश और आरती मुखर्जी की। शकील अहमद ने इसे लिखा है और आनंदा शंकर का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस समय इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और तर्ज बनाई है रोशन ने।

आज हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि है। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी, ऐसी भावुकता थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके गाए गीत आज भी उतने ही ताजा और अपने से लगते हैं। आज हम उन्हीं के अमर गीतों को याद कर रहे हैं और आइए इसी के साथ सुनते हैं आस का पंछी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

दुनिया ना माने इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, मदन मोहन का संगीत। और साथियों बता दें आपको कि आज आप सुन रहे थे मुकेश की पुण्यतिथि पर उन्हीं के गाए कुछ हमेशा सुने जाने वाले पसंद किए जाने वाले नगमे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से

0: लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779901075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00868518842845। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता

0: युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

0: शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला

0: जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8:15 हुए हैं, समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे विविध भारती मुंबई से।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुलाकात पर। मुलाकात केवल दो लोगों का मेलजोल नहीं होता, ये भावनाओं, यादों और अपनापन का एक सुंदर संगम होता है। कभी कभी वर्षों बाद किसी अपने से हुई छोटी सी मुलाकात भी मन में ऐसी खुशियां भर देती है जैसे सूखे हुए आंगन में अचानक फूल खिल उठे हो। हर मुलाकात अपने साथ कुछ पल लेकर आती है, कुछ मुस्कानें, कुछ बातें और कुछ यादें। कुछ मुलाकातें जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देती हैं, तो कुछ मुलाकातें बीते हुए पलों को फिर से जीवंत कर देती है। अपनों से मिलने का आनंद शब्दों में नहीं बल्कि आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान में दिखाई देता है। मुलाकातों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक सच्ची मुलाकात कई शिकायतों को मिटा सकती है और दिलों के बीच की दूरियों को कम कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर संदेशों और साधनों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का एक एहसास ही अलग होता है। किसी अपने की आवाज, मुस्कान और साथ बैठकर बिताए हुए पल रिश्तों को और भी गहरा बना देते हैं। मुलाकात वो खूबसूरत पल है जहाँ समय कुछ देर के लिए ठहर जाता है, यादें मुस्कुरा उठती हैं और दिल कहता है कुछ रिश्ते दूर रहकर भी पास रहते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जो कभी कभी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी यादें जीवन भर हमारे साथ चलती है। किसी अपने से मिलना मन को वैसी ही शांति देता है जैसा लंबे समय बाद थकी हुई आत्मा को सुकून की छांव मिल जाए। मुलाकात का अर्थ केवल सामने बैठकर बातचीत करना नहीं, इसमें अपनापन होता है, भावनाओं की गर्माहट होती है और एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को समझने का अवसर होता है। कई बार वर्षों बाद हुई एक मुलाकात पुराने रिश्ते में नई जान डाल देती है। बचपन के मित्र, बिछड़े हुए रिश्तेदार या पुराने परिचित जब मिलते हैं तो बीते हुए दिनों की यादें फिर से आंखों के सामने जीवंत हो जाती है।

कुछ मुलाकातें अचानक होती है और जीवन में विशेष स्थान बना लेती है। राह चलते किसी पुराने साथी से मिल जाना, किसी प्रियजन का अचानक घर आ जाना या किसी लंबे इंतजार के बाद अपने से

खुशियाँ ये पल मन में खुशी की नई रोशनी जगा देते हैं। ऐसी मुलाकातें हमें एहसास कराती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती समय और दूरी से कम नहीं होती। आज के आधुनिक समय में हम दूर बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात का महत्व अलग ही है। किसी की आंखों में खुशी देखना, चेहरे की मुस्कान महसूस करना और साथ बैठकर कुछ पल बिताना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। शब्दों से अधिक कभी कभी एक मुलाकात बहुत कुछ कह जाती है। मुलाकातें हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना आवश्यक है। जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी प्रेम और साथ की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। कुछ मुलाकातें जीवन बदल देती है। ऐसी मुलाकातें हमारे विचारों और रास्तों को नई दिशा दे सकती है। मुलाकातें जीवन की किताब के वे सुंदर पन्ने हैं जिसे पढ़कर मन बार बार मुस्कुरा उठता है, क्योंकि सिर्फ मिलते नहीं, वे अपनी मौजूदगी से अपने जीवन में खूबसूरत एहसास छोड़ जाते हैं।

0: अपने आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से पारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग

तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए कुछ पलों का इंतजार।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदो।
2: नए गानों के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मणिकर्णिका इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने, प्रसून जोशी की रचना है और सुरों में ढाला है शंकर एहसान लॉय ने।

सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प।

0: कि शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की, गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए सफल सुना हुए था। सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे
2: मातरम। हेलो फ्रेंड्स, मनो इस फिल्म का गीत अब सुनिए मुर्ग हुसैनपुरी की आवाज में। राजशेखर ने लिखा है

है सहमति पर। जो स्टील देश के रेलवे, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार हर किसी की जिंदगी से जुड़ा।

पाकिस्तान 1 सितंबर शनिवार के सितारे में 4 बजे विविध भारती पर। श्रोताओ, आज विश्व झील दिवस है। ये हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य झीलों के महत्व और उनके संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। झीलें जल, जैव विविधता और पर्यावरण का महत्वपूर्ण आधार है। इनके संरक्षण के लिए प्रदूषण रोकना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं थैंक यू फिल्म से। मास्टर सलीम और ऋतु पाठक ने इसे गाया है, आशीष पंडित ने लिखा है और प्रीतम ने इसकी धुन बनाई है।

0: हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां हैं, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

کچلش میخواد، کچ مخوری انداز.

चित्रों कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अय्या इस फिल्म का गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

शांतमणि खोलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाजों में अभी आपने सुना अय्या फिल्म का गीत। और इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुकेश को, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसके अलावा आज दोपहर 4 होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आप सुनेंगे, संवादक होंगी ममता सिंह। तो इन कार्यक्रमों को जरूर सुनिएगा, भूलिएगा नहीं इनका समय। इसी के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतरराष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है कार्यक्रम।